एस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल। बुढी गण्डकी जलप्लवे निपत्य पञ्चजना सम्पर्कविहीना वर्तन्ते। जलप्लवे निपत्य उङ्गिलुङ मेषगोष्ठे निवसन्त चुम नुब्री पालिकायाः षष्ठवडा क्षेत्रस्य पञ्चजना सम्पर्कविहीना सन्तीति गोर्खा जनपदस्य प्रमुख जनपदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रः असूचयत्। ह्य प्रातः आसन्न चतुर्वादने निपतितेन भूस्खलनेन सहसा नदी अवरुद्धा, अनन्तरं सहसा नद्याः प्रवहणात् जलप्लवः दुरापन्न इति जलविप्लव पूर्वानुमानमाशाखया ज्ञापितं वर्तते। उङ्गिलुङ खोला नद्या पक्षत बुढी गण्डकी नद्याम् दुरापन्नेन जलप्लवेन गोर्खा जनपदस्य चुम्नुब्री धार्चे आरुघाट ग्रामपालिकासु महती क्षति प्रापिता वर्तते। चुम्नुब्री ग्रामपालिकायाः लोकपा न्याङफेदी शिरदिवास सल्लेरी जगदक क्षेत्रेषु क्षति प्रापितास्ति। एवमेव धार्चे ग्रामपालिकायाः दोबान माचीखोला यारुबगर क्षेत्रेषु आरुघाट ग्रामपालिकायाः सोती आरुघाट बजार क्षेत्रयोश्च क्षति प्रापिता स्थिति गोर्खा जनपद प्रशासन कार्यालयेन ज्ञापितं वर्तते। जलप्लवेन अधुनावधि वज्रसेतुद्वयं चत्वार लौह दोलासेतवश्च प्रवाहिताः वर्तन्ते। जलप्लवस्य कारणेन चतस्रिषु जलविद्युदायोजनासु क्षतिः प्रापितास्ति। चुम्नुब्री ग्रामपालिकायाः तृतीयवडा क्षेत्रस्य सहज ऊर्जा प्राली संस्थानस्य ऊर्जा केन्द्रं श्रमिकस्थलञ्च प्रवाहितेस्त। एवमेव धार्चे ग्रामपालिकायाः प्रथमवडा क्षेत्रस्य यारु दोबान स्थलयोः विद्युदायोजनाद्वये क्षतिः प्रापितास्तीति धार्चे ग्रामपालिकायाः अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङ असूचयत्। ऊर्जोजलस्रोत सेचन मन्त्रालयेन एकचत्वारिंशदधिकशतत्रय मेगावट मित क्षमतायाः बुढी गण्डकी जलविद्युदायोजनायां 0.75 मेगावट मित क्षमतायाः दोबान खोला जलविद्युदायोजनायां 0.61 मेगावट मित क्षमतायाः पारखोला जलविद्युदायोजनायां 16 मेगावट मित क्षमतायाः माछाखोला जलविद्युदायोजनायां च जलप्लवेन क्षतिः प्रापिता वर्तते इति ज्ञापितमस्ति। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बुढी गण्डकी नद्या तटीय क्षेत्रस्य वासिनो जना सुरक्षित स्थानेषु स्थातुं संकटग्रस्त क्षेत्रेषु मार्गेषु न यातायातं कर्तुं स्थानीय प्रशासनस्य सुरक्षानिकायानां च निर्देशनानि पालयितुं च अनुरोधादि। प्रधानमन्त्रिणः साहस्य अनुसारेण जलप्लवस्य सूचनायाः प्राप्ते अनुपदमेव आरुघाट स्थानीय प्रहरी कार्यालयात् प्रचालितेन समूहेन नदीतटीय क्षेत्रे निवसन्तो जना सुरक्षित स्थानेषु स्थानान्तरिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा सायेन राष्ट्रिय विपद संकट न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणात् प्रवाहित क्षेत्रेषु 21,602 प्रतिकार्यकर्तारो जना परिचालिताः सन्तीति ज्ञापितं वर्तते। प्रभावित क्षेत्रेषु गोर्खा जनपदस्य सल्लेरी स्थानस्य निर्माणाधीना याः जलविद्युदायोजनायाः 48 सुरक्षितस्थानेषु स्थानान्तरिताः वर्तन्ते। प्रभावितक्षेत्रेषु अन्वेषणोद्धारयोः कृते नेपाली सेनायाः 27,100 नेपाल प्रहरिण 33,100 सशस्त्र प्रहरीबल नेपालस्य 77,100 चेति कृत्वा समग्रतः 37,100 सुरक्षाकर्मिणः परिचालिताः वर्तन्ते। अत्रान्तरे

रेडियो नेपाल ख नेपाल भाष्य समाचार जी उपेश मर्जन पाखिनी नदी थौ नेपाल सम्बत चिन्स सौ पी खुद कौलाथो द्वितीया उत्तरी गोर्खाया चुमनब्री गाउँपालिका बुढी गण्डकी खुसी ना नापोगु खुसी बाल तना चोपी न्यामेसियागु ना सी रुगुदो त पी मनुत चुमनब्री चुमचेत या खुइ न्याद या सोनाम लामा वेक या जहान ने गुद या मोमो अजी लामा खुइ खुद या सोम पुट्टी लामा खुइ च्याद कर्म लामा व पी छदया टेन दोर्जे लामा ख निक सुते आका जका वगु खुसी बाल छे ता जल विद्युत या त आप्ल सेङ्का पिगुदु चुमनब्री या लोकपा ओ चुमलिङ चल हुने ढुङ्खा ओगु खुसी बाल खुसी सेते चोपिन्द बामलाक लिचो लाकुगुदो राष्ट्रिय विपद जोखिम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण या कथ उङलिङ खुसी चल ओगु व उकी तिना त गुल आका झाका पिहा वे ढुङ्खा खुसी त धङ्गु बा ओगु ख तना चोपिन्द मालिकु ज्या चुया चुङ्गुदो नेपाली सेना हेलिकप्टर विदेशी नाप गुइ न्यामेसित उद्धार यागुदो जल विद्युत आयोजना या सल्लेरी क्याम्पे दुपी कर्मचारी पिन्तन सुरक्षित थासे यङ्गुगुदो खुसी बाल निगु मोटर ओनिगो ता निगु झोलुङ्गे ता सुङ्गु जल विद्युत आयोजना पी न्यागु छे पुङ्क व नि नेगु छे बच्चा शङ्का बिगुदो स्विपिङ साछे टेलिफोन टावर विद्युत या था उपकरण सङ्गुदो खुसी बाल गोर्खा या धार्चे आरुघाट तक लिचो लाकुगुदो थोय चोले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय छगु सूचना पिथसे खुसी बाल लागे माकथ स्वास्थ्य सेवा वास व गुहाली चु लाका बित स्वापुदुगु निकाय त सक्रिय जित इनाप यागुदो स्वास्थ्य कर्मी परिचालन याना वास यागु व मेगु गुहाली चुला के त थथे तयारी यागु ख प्रधानमन्त्री बालिन शाह बुढी गण्डकी खुसी चोपी मनुते त सुरक्षित थासे चुने त इनाप याना दिगुदो प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पाखे सुथे छ बजे गोर्खा धादिङ तनहु चितवन नवलप्रासी पूर्व व नवलप्रासी पश्चिम या निस व निसम्म प्रतिकारीकर्ता परिचालन या त एसएमएस छोगु धैदिगुदो जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र व बाढी पूर्वानुमान महाशाखा गोर्खा धादिङ व चितवन या बेनीघाट तक निगु लाख एसएमएस निकटक छोगु वेक खनादिल थोयतथी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका कजी पुष्पकमल दाल प्रचण्ड छाका जुगली थपिन्द दुःख त्याकुगु जितनादिगुदो मोनी नखया निनुई मिग नलसुवा पिगु थासे पूजा यागु चलन्दु मिग विधि नक्सा नलसुवा पि थुङ्का गुम दुर्गा मध्ये शैलपुत्री या पूजा यागु ख थौ ब्रह्मचारिणी या त पूजा यागुदो हलि यङ्क या प्राणी या त सचिदानन्द रूप दुम ब्रह्म या त थुके त मधिक यहीमे ब्रह्मचारिणी धाइ सोनिग नाप थिति शक्तिपीठे थौ न पूजा यागु चलन्दो थौ मोहनी छे दुगु बसन्तपुर हनुमान ढोका दरबारे हेरचार अड्डा पूजा याइगु धागुदु गुलाबाज थ्यागु कोच्या थुङ्का मोनी नख या नलसुवा पिगु निहितक बनी शक्तिपीठे मतबी उनी गुज्या कोचागुदो सोनिगले दुगु थिति शक्तिपीठ अर्थात् पिङ्गले लक्ष्मीङ्क बनी धिमे थाना बासरी पुया झोलाक मिस्तपी मत बि उनीगु परम्परा दो मिग लक्ष्मीङ्क थथे मत बि वङ्गुली पिङ्गले ओना पारु फेतक नेगु चलन्दो थथे लक्ष्मीङ्क मत बि ओन थासा शक्ति वैगु व देव पाखे आशिका चुलाइगु तुकुमा यागुदो बहुभाषिक कवि गोष्ठी ओइगु असोज 30 गते राष्ट्रिय नाच गरे जितेङ्गुदो नेपाल सम्बत हो त राष्ट्रिय समारोह समिति या गोसालय नेपा या राष्ट्रिय सम्बत नेपाल सम्बत या साहित्य व सृजना पाखे प्रचार प्रसार यागु तातुना थोज्याजो यातेङ्गु नेवा दे दबुयानुकु उमेश स्थापित तैतिगु ख ज्याजुले नेपाल प्राज्ञ प्रतिष्ठान या प्राज्ञ परिषद दुज प्राज्ञ कवित्री प्रतिष्ठा साइमी मुपा कथ जाइगु गोसा खलक धागुदु।
नेपाली काङ्ग्रेसका खुल्ला उपसभापति डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी व मधु आचार्य त्यानादिगुदो अथे समावेशी उपसभापति विनोद कुमार चौधरी त्यानादिगुदो अथे महामन्त्री प्रदीप पौडेल व उदय शमशेर राणा त्यानादिगु दु महामन्त्री मिसा पाखे डाक्टर डिला सङ्ग्रला त्यानादिगु निर्वाचन समितिया सदस्य सचिव राजु कटवाल धाइदिगु ख मिगन हिने निसे हाक्न पृथ्वी राजमार्ग चागुदु धादिङ्गा प्रहरी प्रमुख सुमित खड्का निखेर सडक न्यागु धाइदिगु ख धादिङ्गा गजुरी गाउँपालिका गलोदी पृथ्वी राजमार्ग त्रिश्री खुसी कटान यागुली सडक स्योङगुली शुक्रबार निसे लेपङ्ग जुयाचुङ्गु ख नेपालगञ्जे ता इल निसे झनाचङ्गु सचिव नेगु खगु रामलीला भिग निसे यागुदो भारत वृन्दावन वगु राधा रमनिया नेतृत्व वगु राम सीता लक्ष्मण हनुमान व रामुन्नाप नि न्यामसियागु कलाकार पुचल मिगनिसे रामलीला किङ्कुगु ख असत यादव सत्य त्यागुगु धाइगु मोहन याहुनी नलसुवा पिगु निहिनिसे थोलीला निहाइ निपतिक बहनी च्याता इसे चिन्ता इतक रामलीला केनिगु गोसा खलक धागुदु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रुस व युक्रेन दोथी ऊर्जा पूर्वाधारे आक्रमण दिकेगु ऊर्जा युद्ध विराम सहमति जुगु दाबी यानादिगुदो युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्की थज्याको सहमति जुगु मसिगु तयादिसे रुस आक्रमण मयाइगु खसा थपिन आक्रमण मया त तयार दुगु नेतादिगुदो ट्रम्प रुस डिजेल आपूर्ति यागु सम्झौता छेलबलाय नीति युक्रेन रुसी चिक पूर्वाधारे आक्रमण दिकेमा धाइदिगुदो थो सम्झौता या त युक्रेन नाप अमेरिका व युरोप याचु रान्तिक नेतापिनस कु खेनादिगुदो थोय दोथी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प युक्रेन र राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्की रुस नाप या ल्वापु त्वातेत कुत मयाको धाइदिसे युक्रेने नुम राष्ट्रपति ले मागु यी वगु नेतादिगुदो अमेरिका या डिजेल या भा हा ओङ्गुली जेलेन्स्किया त दोपनाप बिहादिगुदो जिबुटी डुङ्गा झाका चिन्याम मस्त नाप सचिव गुम सिगुदो झाका लाना सचिव चिन्खुम तनाचुङ्गुदो झाका लापी चेम मुनु त मया त थाह लाग्दो थुपी फुक्क इथोपिया वगु नागरिक ख आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग दुई कथ ओमाने जुयाचुङ्गु त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला क्यानाडा विरुद्ध नेपाल निचागु रहन त्यागुदु थो त्या ढुङ्गला नेपाल छगु दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय कासा मिति फैगु प्रबल सम्भावना हाक्न बोल्न ओगुदु नेपाया नीति बलुङ्गे ललित राजवंशी सन्दीप लामिछाने करण केसी व नन्दन यादव निगु निगु विकेट कयादिगु ख नेपाया नीति कप्तान रोहित कुमार पौडेल बालक मितादिगु ख वेक्ल सचिव हेगु बले च्यागु चौका व छगु छक्का नाप सचिव छगु रन कयादिगु ख थौ कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश या हिमाली व पहाडी लागा नाप लुम्बिनी प्रदेश या हिमाली लागा मोथासे वा नाप च्वापु कुहा वैगु धागुदो कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश या हिमाली व पहाडी लागा नाप लुम्बिनी प्रदेश या पहाडी लागा छगुनीको थासे पच्चा वा नाप च्वापु गाईगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागु ख मिग सोनिगले निखुगु फुटी निगु डिग्री सेल्सियस या क्वाजो लुगु ख थौ नि न्यागु निसे निन हेगु डिग्री सेल्सियस या क्वाजो लुइगु थुकमा यागुदु थौ सुथे न्याता इजुया नेखुगु मिनेटे लुगु सूर्य शनिलय न्याता इजुया पि सुङ्गु मिनेटे बि नेपाल भाषा बुख कोचाला शुभ

क्र्याक गुर्केक ज्याबा तामाङ गजल द विशेष उपमा नाई दुई दुई रि चुनन स्यालगार गेताङरी फिलर म्युजिकला रूपी प्रयोगला बन खापमला न्यानखेन गदे खाले खाले से बिसे पुई खापा नामदर गदे डो मानुन चु ट्र्याक द प्रयोगला बन खापमला थे तपसे खास्टन वाइथेन गजल गदे ब्रिबरी सेमा तपमबा थे ट्र्याक सोसी रेङमा दुई तासी जिन ममबा तीरे लकुनु जनवादी काइपा वाई ब्रिकेन्थेन संगीतकार चन्द्र वाई वा सिंह दा छाया यसै लामन लिब लिब छिग्री गजल बिबटिम नदै गोर्खे गजल बिसी भाउ नै सङ्गीत युला बिसी सुङ्ब बुबा यहाँ त खासरन गजल बिबारी सेम विषम आरे बुबा चन्द्र वाई वा झुझे त देपेन रूपता वा दुरी सूर्य खाई नै ब्रिगो बिसी पाङमा गजल बिजो बिसिङ योजी थे दुई दो नाई ब्रिगुलम बिभसुत्ताइनुन भानमा नारे बुबा तासै नुन चन्द्र वाई वा ज्योजी यसै गजल बिसम नाई चुरङमा सङ्गीत युबारी माइबन मुला बिसी नसी छिग आरे बकाइरी कोसी थिए नला बुबा न त थिए सङ्गीत से सेम थुर्जी ओ सेम तिलाई दुई नाङ्रेन बिब गजल हिन्न राङ्लन गोङमा नेसी भ्रमा सुसेर खाबा तिल्दा भ्रासिटिबा नाला ग्याम्री पुजु रोइबा तिल्दा चु गजलदा चन्द्र वाई वा राङ्दन कोपुङ बङ्गाला सेम बुबा चन्द्र वाई वा बेन्दुकिक जनवादी काइपा सङ्गीतकार थिएन वाई ब्रिकेनला रूपरी मुसेब मिता बसे मुला तला चु माया प्रीतिला वियोगला बिछोडला अर्थात् ट्राजेडी वाई तापसे मुला तला चन्द्र वाई बजे जे छे सङ्गीत युसाइनन कोबारी छे मालाजी ओसेम चु वाई लिछारी विशाल कालतन से को बहिन्ना चु वाई द सिमनी बलि छ तामाङ निर्देशक थे नायक अमीर दोङसे नाई चुला भिडियो सोला आस्याङ बिसी सुङ बम्बुबा लिछ चु वाई ला निर्देशन अमीर दोङसेलाजी चु वाई री अमीर दोङ मिलन थिङ पारङ निरञ्जली लामा छ्याम्री लामन कलाकार गदेसे अभिनय लापमला चुतुन्ब भूमिका खिबलि छ ज्ञानगे राङ्लन गुङमा नेसी ब्रामा सुसेर खाब तिल्दा भ्रासिटी बङ्गाला ग्याम्रे पुजु रोइब तिल्दा चु गजलडी काइमुला दन्देला चर्चित काइपा विशाल कालतन थेन चु वाइरी सङ्गीत मुला चन्द्र वाइबाला विषम छिग्जा गा सूर्य मक्तानलमला।

잔댕이 추지 카이마기 그 단마 카삼 망그리비시 레고야 나이 빈바 나라 포토 투크라라시 디고야 나라 민세 심마 아크로가이 에다 나라 젠무라 레가이 차르가이 체랭가이 비바 나라 심무라 나다 클라시 니바 마야 에다 나라 젠무라 वास्तवले चुबी मङ्गा छ तामाङ वाइ सङ्गीत ल थुम्रे चुदै लिबा छिग्री चुदै लिबा सङ्गीत एन्काई ओसेम सङ्गीत संयोजन निमुबा तामाङ गजल खाबनारे मुबा थेली छ विषम स्यान स्यान लामन ज्याब ज्याब तामाङ वाइ गदे खाब मुसाइनुन तामाङ गजल गदे विषम खाबनारे मुबा थेली छ खाबा रामबाबु योन्जन ल काइरिन मुबा झेली लजी जिन्दगी से जैलन क्रासी चितोजी राङला मिदा तिनी खासे मेला मिगा बिदोजी थेन मिसे मराङबा गाङ्गेबा शेर सोमला आइरक्से थेन प्रकाश बोलोन्से ब्रिबा ताङला आदि सुखताजी बिसे लुङला आदि दुःखताजी बिसे बिबराङबा वाइगा देखाजे लिचल रेम्री छारछार काइपा जुगु जोगला लामा हावा लामा कोसिस थोकर थेन रोशन लामा राङबा काइपाका देशे आधुनिक तामाङ वाइ तसैनन् गजल बिदा त थुर्बा खाल्ला वाइगा दे कोपम राङबा मला तसैनन् ङाछला तामाङ गजल कोपाका दे रामबाबु योन्जन अमृत लामा विश्वदोङसे कोपाराङमा वाइगा दे जकी च्याङना खासी टिप मला आशालाई दान्दे छार छार कमर्सियल वाइगा दे चिकन खासी टिपा दुईरी खाइमाइनन् आशीबा जकी पाको ज्ञान खेटगा देश ज्ञानमा खाल्ला वाइगा देनन् बाबारे खामगे विवान दान्दे ज्ञानगे अमृत लामा सेकोबा ताङला आदे सुख ताजी बिसे लुङला आदे दुःख ताजी बिसे दुःख सुख जिन्दगी हिन्ना खासी खाइरी आनिबा कृप राङन प्रेनन् ब्राबा जिन्दगीला चुनन् रोहिन्न बेबफाई

कायमा कादेरी जोगलाल नामाला वाइगा दे जक्की क्लासिकल आधुनिक थेम गजल को बस्या पमला हिम्बम नाई काइपा जोगलाल नामादा गेतांग सेलगारी तामलाबारी बिसे निरेम सोब्रेम हुई सिजिन जे खाइमा जोगलाल ला ओसम खाइमा ngalan दुई आडिक पासे दन्दे दोना तामलाबारी म्याङ सिटी बारे यदि तामलाबारी म्याङमा हिन्न बिसन रोसे को बवाई रोजा खारङमा काइपा संगीतकार हिन्न बिबतान थाता परी खामचल मबा च्यागे खबरेरी दुई ताजी बिसम अवश्य तामलाबारी बांग्ला सर मला बिबान दान्दे तजा बिसम रोसेन कोबा गोर्केको वाई न्यानके वाई मला लाभा खाला झरी तला ढुई निला सेमनाङरी खाइमाई थारेङ आता बिबा याङला चु मायारी बिबभाई।

ये रेडियो नेपाल है, हफीज खान से उर्दू में खबरें सुनिए। वजीर आजम बालेंद्र शाह ने कहा है कि किसी भी पेशे में कामयाबी का पहला मेयार अखलाकियात, दयानतदारी और ईमानदारी है। नेशनल पुलिस एकेडमी महाराजगंज में आज मुनक़दा पुलिस इंस्पेक्टर बुनियादी तरबियत 1/184 में ग्रुप के कन्वोकेशन की तकरीब में वजीर आजम शाह ने फरागत हासिल करने वाले तमाम जवानों को हिदायत की कि वह हासिल करदा इल्म की मुकम्मल तौर पर पैरवी करते हुए उस पर अमल करें। उन्होंने कहा कि हमेशा सबसे आगे खड़े रहने और मुल्क में अमन सलामती को बरकरार रखने, जराइम की तहकीकात करने और कौमी सतह पर सही तरीके से किसी भी आज़ादी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी नेपाल पुलिस के कंधों पर है। अपनी तंजीम के साथ मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म होकर ताउन और अमली शराकत के साथ जुड़े रहने की अपील करते हुए वज़ीर आज़म शाह ने इस ख्याल का इजहार किया कि इत्तलाआती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से न सिर्फ तेज़, आसान और शफाफ बनाया जा सकता है बल्कि वक्त की बचत, जराइम की बरवक्त तफ्तीश और बरवक्त वाकयात पर काबू भी पाया जा सकता है। कन्वोकेशन तकरीब में नेपाल पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल दान बहादुर कार्की ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि वो ज़ाती मफादात और बेजा असर और रसूख में पड़कर अपने अहदों का गलत इस्तेमाल ना करें। उन्होंने कहा कि पुलिस की क़्यादत को अहकाम की बजाय मिसाल से देखा जाना चाहिए। इंस्पेक्टर जनरल कार्की ने पुलिस जवानों से अपील की है कि वह ईमानदारी, नज्म ज़ब्त, पेशावराना दयानतदारी और ज़िम्मेदारी को तरजीह दें। गोरखा के चुमनबरी गांवपालिका वार्ड नंबर 6 के लोकपा और चुमनिंग के दरमियान एक बड़ा तूदा गिरने के बाद बूढ़ी गंडकी बंद हो जाने से कीचड़ समेत आए सैलाब में 5 अफराद लापता हो गए हैं। लापता अफराद में चुमचित उंगीलुंग के सोनाम लामा, लापा ठोरमा लामा, कर्मा लामा, सुम्बुती लामा और तीन दर्जे लामा शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि उनकी तलाश जारी है। सैलाब मुतासर इलाके से 48 अफराद को बहिफाजत निकाला गया है। सैलाब से 26 घर, 9 चौपाल, 4 पुल और 1 सरकारी दफ्तर को नुकसान पहुंचा है। मुतासर इलाके में 538 पुलिस एहलकारों को मुतहरिक किया गया है। नेपाल पुलिस ने बूढ़ी गंडकी नदी के साहली इलाकों के बाशिंदों से अपील की है कि वह पुरखतर बस्तियों, नदी किनारे पुलों और सड़कों पर जाने से गुरेज करें और मकामी इंतजामिया और हिफाजती इदारों की हदायत पर अमल दरामद करें। रसवा के भोटे कोशी नदी में आए सैलाब के बाद वज़ीर आज़म कुदरती आफात इमदादी फंड और वज़ीर आज़म राहत फंड में माली इमदाद आने का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक फंड के मुख्तलिफ खातों में अब तक 17,54,42,89,678 रुपया जमा हुआ है। वज़ीर आज़म कुदरती आफात इमदादी फंड के मुख्तलिफ 9 तजारती बैंकों में 12,95,16,31,201 रुपया और हिमालय बैंक और लक्ष्मी सनराइज बैंक के खाते में 2,97,29,972 अमरीकी डॉलर मौजूद हैं। हुकूमत ने इस फंड में जमा की गई रकम में से इससे कबल 1 अरब रुपये मुतासर इलाकों के लिए जारी किया था। वज़ीर सेहत और ग़िज़ाई शफाफियत निशा मेहता ने कहा है कि ज़हनी तिब्बी ख़िदमात को बेहतर, मेयारी, काबिल रसाई और सार्फीन दोस्त बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। ज़हनी सेहत के आलमी दिन 2026 के मौके पर आज वज़ारत सेहत और ग़िज़ाई शफाफियत के ज़रिए तमाम करदा प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ज़हनी सेहत से मुतालिक मौजू हुकूमत की तरजीहात में है। उन्होंने कहा कि हर शहरी ने अपनी ज़हनी सेहत से मुतालिक मसले पर खुलकर बात कर सकने, बरवक्त ज़रूरी मदद हासिल करने और बावक़ार तौर पर गुजर बसर कर सकने का माहौल बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। वज़ीर दाखला सुदन गुरुंग खलीज बंगाल कसीर इलाकाई तकनीकी और इक्तसादी इमदाद की पहल बिमस्टेक के रुकन ममालिक के वज़राए दाखला के इजलास में शिरकत के लिए आज भारत के लिए रवाना हुए हैं। वज़ीर दाखला बनने के बाद गुरुंग का यह पहला गैर मुल्की दौरा है। वो भारत की नई दिल्ली में असोज 28 गते होने वाले बिमस्टेक के वज़राए दाखला सतह इजलास में शिरकत के लिए उस जानिब रवाना हुए हैं। सन 1997 में कायम होने वाले बिमस्टेक में नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड पर मुश्तमिल 7 रुकन ममालिक हैं। वज़ीर दाखला गुरुंग असोज 28 गते वतन वापस होंगे।
दुर्गा पक्ष के दूसरे दिन यानी नवरात्रि के मौके पर मुल्क भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों का मजमा लगने लगा है। आमतौर पर भी देवी मंदिरों में हुजूम होता है, ताहम आज दशहरा का दूसरा दिन होने की वजह से अकीदतमंदों की ज्यादा भीड़ है। दारुल हुकूमत के गुहेश्वरी, जय बागेश्वरी, मैती देवी, कालिका स्थान, नक्साल भगवती, भद्रकाली, शोभा भगवती, बीजेश्वरी, इंद्राणी, रक्तकाली, श्वेतकाली, दक्षिण काली, चामुंडा माई, सुंदरी माई, बज्र योगिनी, बंगलामुखी, टोखा और चंडेश्वरी समेत के मंदिरों में अकीदतमंद दर्शन करने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। दशहरा और दिवाली का त्यौहार करीब आते जाने के दौरान काठमांडू वादी ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हिफाजत और हादसात में कमी लाने के लिए अपनी बेदारी मुहिम को तेज कर दिया है। नया बस पार्क, नागढुंगा और कोटेश्वर समेत बड़े इलाकों में मुसाफिरों और ड्राइवरों से अपील की गई है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पैरवी करें, महफूज सफर करें और सड़क के नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखें। काठमांडू वादी ट्रैफिक पुलिस दफ्तर के मुताबिक मुहिम के तहत अवामी गाड़ियों की मैकेनिकल कंडीशन की जाँच, नशा करके ड्राइविंग की जाँच और माइकिंग के जरिए आगाही प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि तेज़ रफ्तार में गाड़ी न चलाएं, गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर ना ले जाएं, थकावट महसूस होने पर आराम करें और नशे में गाड़ी न चलाएं। पुलिस ने तमाम ड्राइवरों और मुसाफिरों से यह भी अपील की है कि वो त्योहारों के सफ़र को महफूज, मुनज़्म और आसान बनाने के लिए ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करें। नेपाली कांग्रेस के खुले तौर के नायब सदर के ओहदों पर डॉक्टर चंद्रकांत भंडारी और मधु आचार्य को जीत हासिल हुई है। उसी तरह शमूलियती नायब सदर में विनोद कुमार चौधरी मंतखब हुए हैं। उसी तरह जनरल सेक्रेटरी के ओहदों पर प्रदीप पौडेल और उदय शमशेर राणा ने कामयाबी हासिल की है, जबकि डॉक्टर ढीला संगरूला पंत ने खातून जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए कामयाबी हासिल की है। सालों से मियारात के खिलाफ नदियों और कानों से कुदरती वसायल का इस्तेमाल कर रहे काबरे पलानचुक के सनतकारों को आइंदा मंगसर 7 घंटे तक मियारात में आने के लिए वक्त मुकर्रर दिया गया है। ऐसी सनतों के खिलाफ जिले इंतजामिया दफ्तर ने सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह भी दिया है। जिला सतही निगरान कमेटी ने जिला के अंदर चलाए जा रहे पत्थर, गिट्टी, बालू और मादनियात की सनतों को कानूनी दायरे में लाने के लिए 9/9 फैसला किया है। CDO गोपाल कुमार अधिकारी ने बताया कि कमेटी की जानिब से मुकर्रर करदा हद वक्त के अंदर बुनियादी शराइत पूरी नहीं करने वाली सनतों को मंगसर 8, 9 और 10 गते दोबारा ज़मीनी मुआयना के दौरान सील बंद करके सनतों को चलाने पर पाबंदी लगाने और सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। मुग के खतियाड़ गांव पालिका वार्ड नंबर 11 के बीरा खोला के इलाके में तूदा गिरने से एक एक्सकावेटर दब जाने से ऑपरेटर की मौत हो गई है तो मुआविन ऑपरेटर जख्मी हो गया है। मुगुरारा अंदरून सड़क हिस्से के तहत बेली ब्रिज से जुड़ने वाली नई सड़क की तामीर के दौरान आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे ऊपर से गिरे तूदे में एक्सकावेटर ऑपरेटर दब गया था। पुलिस के मुताबिक JCB की मदद से तूदे को साफ करने का काम सुबह 9:40 से शुरू हुआ था, जबकि ड्राइवर को सुबह 10:30 बजे निकालकर इलाज के लिए ट्रक के जरिए इब्तदाई तिब्बी मरकज राता पानी ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। मुतवफ़ा की शनाख्त जिला बजाने का रहने वाला एक्सकावेटर ऑपरेटर बिमल बाग के तौर पर हुई है। आज सुबह उर्लाबारी गांव पालिका वार्ड नंबर 7 के 79 साल कृष्ण बहादुर कार्की की एक कार की टक्कर से मौत हो गई है। साथ ही उर्लाबारी वार्ड नंबर 7 की 82 साल राम कुमारी राय उस हादसे में पड़कर जख्मी हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मी राय अर्निको अस्पताल उर्लाबारी में जेर इलाज हैं। इलाकाई पुलिस दफ्तर उर्लाबारी के मुताबिक हादसे में मुलविस उर्लाबारी गांव पालिका वार्ड नंबर 7 के 41 साल योगराज कार्की को कार समेत हिरासत में ले लिया गया है। रेडियो नेपाल से उर्दू में खबरें खत्म हुईं।